0: अरे मैं बोले टूका ए काका ठोक से मंकन चान थुका तान बुरु से कर से किकने चान से
1: बन बुझे हल
0: का